0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम सब इस नियम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम जमीन में जिस चीज का बीज डालेंगे फसल भी हमें उसी की मिलेगी। अगर हम कड़वे नीम का बीज बोएंगे तो मीठे फल की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, लेकिन जब जीवन जीने की बात आती है तो हम इसे सीधे से नियम को भूल जाते हैं हम दिन रात अपने भीतर नफरत, ईर्षा, चालाकी और वासनाओं के बीज बोते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि बदले में हमें सुख, शांति और परम आनंद का फल मिले। जब ऐसा नहीं होता तो हमारे जीवन में दुखों और चिंताओं की कड़वी फसल कटने लगती है, तो हम अपनी किस्मत को या भगवान को दोष देने लगते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी कर्म सिद्धांत की गहराइयां समझा रहे हैं। इस पूरे खेल के पीछे छिपे असली अपराधी यानी हमारे मन को पकड़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अनोखा सूत्र। कबीर मारो मन को टुक टुक भय जाई, कबीर मारो मन को टुक टुक है जाई, विषय की क्यारी बोई करी, लुणत कहाँ पछिताई। कबीर मारो मन को

हाय श्रोताओं, कबीर साहब साधक को एक अत्यंत कठोर और दृढ़ निर्देश देते हुए कहते हैं, कबीर मारो मन को, हे साधक, तू अपनी सजगता और विवेक के प्रहार से इस चंचल और भटकाने वाले मन को पूरी तरह मार डाल, शांत कर दे, टुक टुक वह जाए। इस मन के अहंकार को, इसी वासनाओं को कुचल कर टुक टुक यानी टुकड़े टुकड़े कर दो, ताकि यह फिर से तुम्हें बहका न सके। वे मन को मारने के लिए इतनी करवाहट से क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में इसके पीछे का अचूक तर्क देते हैं। विषय की क्यारी बोई करी, कबीर कहते हैं कि इसी मन में, अज्ञान के वश में होकर संसार में विषय यानी विषय वासनाओं, लालच और सांसारिक प्रपंचों की क्यारी बोई थी। तुम खुद ही इसके बोने वाले हो, लूणत कहाँ पछताई। और जब उस बोए हुए कर्मों को लूणत यानी काटने का, उनके दुखों को भुगतने का समय आया है, तो अब रोने और पछताने से क्या लाभ। जब बीज तुमने ही कड़वा बोया था तो फसल भी कड़वी ही काटनी पड़ेगी। यह दोहा कर्म विपाक और मनोनाश की साधना का अद्भुत निचोड़ है। भारतीय दर्शन में माना गया है कि हमारे सारे दुखों का मूल कारण हमारा मन ही है, क्योंकि मन की इच्छाओं ही कर्म की दिशा तय करती हैं। कबीर यहाँ मन को मारो कहकर मन को नष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मन की उस मूर्छा और अहंकार को तोड़ने की बात कर रहे हैं जो मनुष्य को गलत रास्तों पर ले जाती हैं। लूणत कहाँ पछताई, इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति का नियम न्यायपूर्ण और अकाट्य है। आप प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। अगर वर्तमान में शांति चाहिए तो मन की उन वृत्तियों को भी रोकना होगा जो भविष्य के दुखों का बीज बो रहे हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी जिंदगी की क्यारी को देखिए। आज हमारे जीवन में जो भी अशांति है, जो भी तनाव या कड़वाहट है, उसे बहुत ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए कि इसके बीज हमने अतीत में कहाँ बोए थे। कितनी बार हमने अपने स्वार्थ और मन के बहकावे में आकर दूसरों को दुख पहुँचाया या व्यर्थ के प्रपंच इकट्ठा किए। आज कोशिश कीजिए अपने इस मन के बहकावे में न आने की। होश का ऐसा पहरा बिठाइए कि यह मन आपके भीतर कोई गलत बीज ना बो सके। अपनी पुरानी आदतों को विवेक से शांत कीजिए और अपने भीतर खेत में राम नाम का, प्रेम और करुणा का अनमोल बीज बोना शुरू कीजिए। जब बीज अमृत का होगा तो फल भी आनंद और मुक्ति का ही कटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला के साथ इन दिनों हम आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, यानी कि मेरी खुशी कितनी बार दिन में ऊपर होती है, कितनी बार नीचे। तो क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि मेरी जो हैप्पीनेस है या मेरा खुशी का जो क्वोशेंट है वो स्टेबल रहे, ये कैसे संभव है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, जब खुशी की बात करते हैं तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने बहुत सी बातें की जो जीवन से जुड़ी थी, मेरी खुशी से जुड़ी थी। हमने ये देखा कि खुशी जब लोगों पर डिपेंड कर रही थी कि वो खुश होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बॉस है, तो मैं खुश हो रही थी। अगेन वो डिपेंडेंसी जो थी, और वो कहीं ना कहीं उनका खुश होना या ना होना मेरे किसी बात से मेरा अपना फेलियर बन रहा था, और मेरी अपनी जो खुशी थी वो छिन रही थी। और दूसरा, हमने जो पिछली कड़ी को देखा था उसमें बात की थी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। They were actually giving me lot of happiness till the time you told me कि वो पर्टिकुलर चीज़ें खुशी नहीं दे रही, मैं खुशी का थॉट क्रिएट कर रही हूँ। यहीं पर हम बात थी, वंडरफुल। यहाँ तक हम बात पहुँची थी कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया कि ये मुझे मिल गया है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी तक बात ये हो रही थी, ज़्यादातर लोग जो हम जो सोचते हैं वो ये कि खुशी एक फीलिंग है, तो क्रिएट करना और नॉन क्रिएट करना थॉट कैसे होगा फिर? सो यहाँ से आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है?
1: गुड वन। खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? खुशी ऑब्वियसली एक फीलिंग है, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट आई गो थ्रू। अब लेकिन

0: ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए सोर्स तो चाहिए ना, फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है? यस इट्स अ फीलिंग, आई एक्सपीरियंस बहुत सारी फीलिंग्स सारा दिन के अंदर, कभी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कभी आई एक्सपीरियंस पेन, कभी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी, लेकिन ये फीलिंग्स किस आधार पर मैं अनुभव करती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन उस पल मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया है.
1: ओके, आई सी अ फ्लावर, बहुत सुंदर एक फूल देखा मैंने.
0: इट डजंट गिव, इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, राइट?
1: इट गिव्स मी सो मच ऑफ अ, यू नो, लाइक सच नाइस फीलिंग.
0: पहले आप एक थॉट क्रिएट करते हो, कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर है.
1: मुझे तो पता भी नहीं कि मैं करती हूँ.
0: अगर किसी को वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा, अब वही फ्लावर आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है. आई मे बी कि मैं उसको क्रॉस करके चले जाऊं और मेरे को कुछ लगे ही ना. फ्लावर तो वही है. मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी, यू नो. आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को देखकर रुककर उसके ऊपर थॉट नहीं क्रिएट किया, तो फीलिंग नहीं जेनरेट हुई उसके बाद. आप रुके, कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया कि ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा कलर, फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, या यू नो कितना व्हाटएवर, जो जो थॉट्स क्रिएट
1: करते हैं. बोलते हैं हम, एक बार फीलिंग आ जाती है उसके बाद हम बोलते हैं,
0: राइट? तो पहले थॉट क्रिएट किया,
1: अच्छा,
0: फिर फीलिंग.
1: थॉट क्रिएट करना तो आई एक्चुअली डोंट.
0: आप एक दिन उसको ऑब्जर्व करना. क्या होता है, प्रोसेस तो यही चल रहा है, हमें तब रियलाइज आता है आफ्टर इट कम्स आउट इनटू वर्ड्स, राइट? प्रोसेस तो वही चल रहा है. अब उसी टाइम जो हमने पिछली बार भी देखा, वही फ्लावर है, वो फ्लावर अभी तक उतना ही सुंदर है. आप भी उन फूलों के सामने ही बैठे हैं, आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, उससे
1: खुशी देती हैं. व्हेन आई बाय अ न्यू ड्रेस, यू नो,
0: यू वेयरिंग अ न्यू साड़ी टुडे,
1: यस, पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट माय साड़ी एक्चुअली इफ आई लुक एट इट. लेकिन जिस वक्त मैं नई साड़ी कुछ ऐसी खरीदूं, या मैं एक नई गाड़ी खरीदूं जो मैं खरीदना चाह रही हूं कब से, या फिर अगर मैं घर की बात करती हूं कि इवन बेडशीट्स या इवन पिलो कवर्स, यू नो, कई बार, या फर्नीचर, सुंदर सा कुछ खरीदते हैं जो डिजाइनर है, जो बहुत इट definitely gives me happiness.
0: So let's keep buying every day new things.
1: No, but we can't.
0: We can't do that. सही बात है. It is true. एक तो दो लेवल पर हुआ कि एक तो हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को साधनों में जरूर ढूंढते हैं. एक्चुअली तो अगर हम अपनी पूरी दौड़ को देखें, ये जो जर्नी पर हम भागते जा रहे हैं, और ये जो इकट्ठा करने का हमें वो चढ़ गया है, दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन, समटाइम्स एन एडिक्शन. ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी आ जाए, फिर हमारी टू डू लिस्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स ही आते जाते हैं, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना. समवेयर आई एम ट्राइंग टू बाय हैप्पीनेस.
1: अच्छा, इनफैक्ट एक और बात है, आई, यू नो, व्हेन यू सेड इट, आई जस्ट क्लिक्ड कि मैंने कोई चीज देखी, सपोज मैंने शोरूम में देखी, सपोज मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट में गाड़ी देखी, कोई मोबाइल फोन नया देखा, कोई ड्रेस देखी, इट स्टेज विद मी. Till the time I buy it, it stays, you know.
0: Yes.
1: And true. The thought keeps on coming that I have to buy that.
0: Because जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ अटैच हुई. यू नो, अगर आप अटैचमेंट की बहुत सिंपल लेवल पर देखो, आप मार्केट में जा रहे हो, एंड अगर आप एक विंडो को क्रॉस करते हो, एक पर्टिकुलर वहाँ पे ड्रेस है या गाड़ी है, वट एवर, आपने क्रॉस कर लिया उसको, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी इफ इट इज देयर ऑन योर माइंड, यू आर अटैच्ड. चली गई है, ऑब्जेक्ट चली गई है, बट इट्स स्टिल ऑन माय माइंड. एनीथिंग व्हिच इज ऑन माय माइंड व्हेन इट इज नॉट देयर
1: इज अटैच्ड,
0: इज माय अटैचमेंट. पीपल ऑन माय माइंड,
1: एक्टर, पिक्चर देखने के बाद भी वो हीरो कंटिन्यूस रहता है आपके दिमाग
0: में. मेरा माइंड फिर प्रेजेंट में ना होकर
1: हमेशा, यस,
0: इट इज लिविंग विद दोज पीपल, या वो ऑब्जेक्ट्स, या वो सिचुएशंस. तो ये कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ती जाती है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, अगर मैंने ये खरीद लिया तो आई विल फील गुड. तो एक तो हमें ऑब्जेक्ट्स को एक बहुत पहले तो बेसिक लेवल पर अगर हम लें कि हम उनको बोलते ही हैं सुख सुविधाओं के साधन, यू नो, सुख भी सुविधा भी. तो सुविधा डेफिनेटली कम्फर्ट, बट समवेयर कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस को हमने मिक्स कर दिया, और सारा प्रोसेस चलता रहा, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये आएगा तो खुशी आएगी.
1: लेकिन इफ आई एम कंफर्टेबल, आई एम हैप्पी.
0: कंफर्टेबल फिजिकली,
1: नो, अदरवाइज,
0: लेट्स लुक एट इट. फाइन, अगर मैं लेट्स लुक एट इट, डज दिस लॉ वर्क फॉर मी, कि अगर मैं फिजिकली कंफर्टेबल हूँ, therefore मैं खुश हूँ. Will that always be applicable?
1: I feel that way. अच्छा, this is what
0: आज आपके लिए मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है?
1: It feels good, yes.
0: It feels good. और फिर आप उस गाड़ी में बैठ गए. गाड़ी is comfortable.
1: Very.
0: Any गाड़ी, whichever गाड़ी we have, it's comfortable. हम पहले 4 लाख की गाड़ी खरीदी, खरीदते खरीदते खरीदते हम 40 लाख की गाड़ी तक पहुंच गए. Of course, features
1: बढ़ते गए,
0: comforts वो बढ़ते गए, happiness भी उतनी बढ़ती गई, proportion from 4 lakhs to 40 lakhs.
1: No, when I am sitting there, see, I'll tell you. Huh. When I'm sitting there and I'm playing with the gadgets, see, when I was in London, we did that. Okay. There were like so many gadgets in the car. Okay. I enjoyed them, you know. Yeah, wo happiness.
0: Stimulant.
1: Yes.
0: Stimulant है, एक नवीनता है, एक कुछ exciting है, वो मैं कर रही हूँ, मैं explore कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. कितनी देर?
1: हाँ, उतनी देर तक
0: है ना. अब उतने ही देर में वो comfortable गाड़ी, कम्फर्ट, वो गाड़ी कम्फर्टेबल है और वो हमेशा कम्फर्टेबल रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. लेकिन क्या वो गाड़ी हमेशा खुशी देगी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन द वर्ल्ड?
1: नहीं.
0: दिस इज व्हाट वी हैव टू से कि वो ऑब्जेक्ट किस क्या चीज देने के लिए बना है.
1: वो कम्फर्ट दे रही है, वो बहुत अच्छा स्मूथ ड्राइव कर रही है, वो सब
0: उसका ए सी बहुत अच्छा है,
1: उसके हैं ये.
0: उसका ए सी बहुत अच्छा है, उसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है. ये चीजें मेरे शरीर को, मेरे कानों को, मेरे कम्फर्ट को, मेरे बैठने के पोस्चर को, मेरी बैक को, ये सब चीजों को बहुत कम्फर्टेबल है. आज कम्फर्टेबल है, कल होगा और हमेशा रहेगा. उसका कम्फर्ट देने का जो इंडेक्स है वो वेरी नहीं करने वाला है. लेकिन डिड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार से कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी इस कार के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा? नहीं. आपका कम्फर्ट लेवल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. जो फीचर उसने आपको सेल किया उस कार ने, उसने आपको कहा कि जब भी आप इस कार में बैठेंगे आपकी बैक का पोस्चर ठीक रहेगा, तो हमेशा रहेगा ना. हमेशा रहेगा, आप कभी भी उसमें बैठो. लेकिन क्या आप हमेशा खुश होंगे जब आप उस कार में बैठेंगे?
1: लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम खुश हैं.
0: अभी आप ऑफिस से निकले, आपकी अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई, अब आप जाके बैठ गए अपनी वो 40 लाख की गाड़ी में, खुश हैं या कंफर्टेबल?
1: नहीं है, खुश.
0: कंफर्टेबल तो है ना, लेकिन
1: तो कंफर्टेबल होते ही मैं थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस बदल सकता है. सी
0: कंफर्ट तो इज नो डिनाइंग कि हमें फिजिकल कंफर्ट चाहिए, लेकिन अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर हम एक ही को प्राप्त करने में लगे रहेंगे. हमने कहा, आपने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इफ आई एम कंफर्टेबल आई विल बी हैप्पी, बट एक्चुअली नॉट नेसेसरी. नॉट नेसेसरी. आज मैं 40 लाख की गाड़ी में भी बैठकर हो सके बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ में कि मैं एक्चुअली सुसाइड करने का सोच रही हूँ, या मैं अभी अभी साइकाइट्रिस्ट से ही आ रही हूँ उस गाड़ी के अंदर बैठ के.
1: सही बात है, वो तो एक्चुअली
0: आई मीन इट जस्ट द कार इज नॉट बींग एबल टू सॉल्व माई इशूज इन लाइफ. द कार इज नॉट बींग एबल टू गिव मी हैप्पीनेस.
1: लेकिन उतनी देर तक तो दे रही है ना हैप्पीनेस,
0: कम्फर्ट दे रही है ना. कंफर्ट दे रही है. सी, अब हो सकता है कि मैं 1-2 लाख की या 3 लाख की गाड़ी में हूँ.
1: यहाँ ना अगर मैं एंगर में हूँ, आई एम वेरी एंग्री अपने, या मैं कुछ बहुत पेन में या हर्ट में आती हूँ और यहाँ मैं बैठ जाती हूँ, अब यहाँ पे ये कंफर्ट भी ना होता तब तो मैं और एंग्री हो जाती.
0: नो डिनाइंग दैट.
1: कम से कम एक नॉच कम तो किया उसने एंगर को.
0: गुस्से को आपको ये कम नहीं करेगा.
1: हाँ, मतलब
0: मेरा शरीर कंफर्टेबल हो जाएगा तो आपका एक जिस चीज का आपको ध्यान रखना होता है, एक चीज आपके यहाँ से निकल जाएगी. लेट्स से एसी भी नहीं है तो बहुत पसीना है तो मैं उस बात से परेशान हूँ, लेकिन चलो कम से कम कुर्सी तो ठीक है ना. ठीक है, अगर कुर्सी भी कंफर्टेबल नहीं होती तो एसी भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, लाइट्स भी इतनी ज्यादा, तो ऑब्स्टिकल्स जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन जैसे ही मुझे किसी ने कंफर्टेबल कुर्सी दे दी तो मेरा वो एक
1: ऑब्जेक्ट
0: जिसके बारे में मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ वो मेरी लिस्ट से बाहर चला गया. लेकिन कुर्सी मुझे खुशी दे देगी
1: ये नहीं,
0: या मुझको ताकत दे देगी,
1: वो बेसिक वो था वो नहीं कर पाती,
0: वो नहीं करेगी. हाँ, ये है कि कंफर्टेबल कुर्सी होने की वजह से मैं उसके बारे में एटलीस्ट निश्चिंत हो गई हूँ, नहीं तो मैं कुर्सी पर भी बैठ के बोलती रहती बैठा ही नहीं जा रहा, इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है. लेकिन कुर्सी खुशी नहीं दे रही है, खुशी नहीं दे रही, अगर ये मुझे खुशी दे देती तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाऊं ना इस पर बैठते. आई एम स्टिल इन पेन, आई कुड बी इन एंग्जाइटी, आई कुड बी इन एंगर. कुर्सी पर बैठने से आपका गुस्सा कम नहीं हो सकता. हाँ, एक और बात जिसके लिए आप गुस्सा करने वाले थे,
1: वो एक्स्ट्रा गुस्सा नहीं आने देता
0: वो, ठीक
1: और
0: है.
1: दूसरा एक और भी है कि थोड़ा सा कम्फर्ट लेवल आते ही, आई हैव सीन दैट, मतलब ज्यादातर लोगों के सामने, कि अगर वो बहुत गुस्से में है कुछ है, अपनी कम्फर्टेबल जगह पे आते ही एक बार को तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, मतलब ले सकते हैं.
0: If they do that, that's fine. But फिर भी गुस्से का
1: पूरा साइकिल तो चलता
0: है. और जो ये ऑब्जेक्ट्स जो हम खरीदते
1: भूल ही जाते हैं उसके बाद, तो जब इतनी मेजर प्रॉब्लम चल रही होती है. यस ऑफ कोर्स, आई थिंक यू ऑल एग्री कि जब हमारे सामने कोई क्राइसिस आ जाता है तब हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने गैजेट्स खरीदे हैं ये क्या कर रहे हैं.
0: आपने जब पहले दिन अगर बड़ी गाड़ी खरीदी तो एवरीवन इन द हाउस इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड, बट फॉर हाउ लॉन्ग? 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द हाउस. जैसे बाकी चीजें पड़ी हुई हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है. फिर वही जीवन है, झगड़े, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही डिस्कशंस. फिर हम कहें कौन सी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ले. सी व्हाट इज हैपनिंग, मेरी जीवन, जैसे आपने शुरू में बोला, वो यो-यो की तरह जो चल रही है, बहुत उतार चढ़ाव है. अब मुझे कुछ कुछ ऐसा करना है हर थोड़े दिन बाद जिससे आई गो टू द पीक.
1: यस, यू नो, बिकॉज आई
0: अग्रीड कि माय लाइफ इज गोइंग लाइक दिस, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स. अब डाउन्स किस सिचुएशन में आ रहे हैं? रिलेशनशिप में आती हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग अलोंग विद पीपल, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार स्वभाव टक्कर में आ रहे हैं, मेरा दर्द है. अब मैं क्या करूं ऐसा जीवन में जिससे मैं अप वाली फीलिंग क्रिएट कर सकूं?
1: क्योंकि जैसे हम ज्यादा देर लो में होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर
0: Now,
1: फिर लगता है कि उससे बाहर निकालने के लिए कुछ चाहिए.
0: अब अगर मेरी फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स है और कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड है हम एक दूसरे से, ये चलो आज मैं एक चीज खरीद के लाती हूँ घर के लिए, एक प्लाज्मा ले लिया आज, ठीक है. See, the whole environment in the house changes.
1: Yes. We reached to that again, वो यो-यो का वो ऊपर वाला आ गया.
0: और सब एक दूसरे से आज बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, सब बहुत excited हैं, सब कहते हैं आज तो treat होनी चाहिए.
1: Let's throw a dinner party. You know, again, कई relationships में देखा है कई couples में कि जब ज्यादा communication gap हो जाता है, so they do कि friends के साथ एक dinner कर लेते.
0: Yes, yes. So why are we doing all these things? तो जैसे हम ये लाते हैं घर के अंदर तो एक नवीनता आती है, एक sense of achievement आती है, कुछ हमारी वो फीलिंग कि हमने अचीव किया वो बढ़ता है. और सडनली सब लोगों का अटेंशन किस चीज पर चला जाता है? उस ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट आने पर और उसके एक्साइटमेंट पे. तो पूरा एनर्जी लेवल घर में क्या हो जाता है?
1: बहुत अच्छा.
0: इट्स वेरी हाई, एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज टॉकिंग वेरी नाइसली. कल झगड़ा कर रहे थे, कल आए तो आई वॉज कंप्लेनिंग टू द हस्बैंड, हस्बैंड वॉज कंप्लेनिंग टू द वाइफ, बच्चे कह रहे हैं आपके पास तो हमारे लिए ये. लेकिन आज घर का वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा है. 2-3 दिन वो प्लाज्मा का इफेक्ट रहेगा पूरे घर पे, फिर फाइनली कितने दिन? कितने दिन
1: प्लाज्मा एक तरह से वो लड़ाई फिर से,
0: फिर नॉर्मल आ गया. इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द वॉल. फिर उसके बाद मेरी वही वाली चल रही है सारी. फिर मैं थोड़े दिन के बाद, अब मैं क्या नया खरीद?
1: दिस इज व्हाट लाइफ इज. सी What is the
0: yo-yo? Is what life is.
1: No, but that's what we say. You know, कि कभी खुशी है, मतलब जिंदगी में यही तो है कि अब हमेशा तो खुशी नहीं रह सकती. In the sense कि हमेशा ही तो कुछ नहीं आप अचीव कर सकते. तो जब आप अचीव करो, जब आपको वो मिले, तब आप यू नो यू शुड एंजॉय इट, एंजॉय द मोमेंट्स एज मच एज यू कैन, लिव द मोमेंट्स, यू नो, दीज आर द ऑल.
0: नो डिनाइंग, नो डिनाइंग. लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग कि कितनी बार चीजें खरीदते रहोगे, कितने बार साल में नई गाड़ियां खरीदोगे, कितने बार नए टेलीविजन, नए मोबाइल. नया मोबाइल आया नहीं मार्केट में तो आई वॉन्ट टू बाय द न्यू मोबाइल.
1: यू नो, नाउ टू अनदर थिंग विच हैज स्टार्टेड हैपनिंग टू शिवानी इज आई वॉन्ट इट. People have just, you know, the moment they see it.
0: Now, ये जो आपने expression create किया, I want it. This is an expression of so much, you
1: need,
0: know,
1: need, yes,
0: so
1: yes.
0: much stress. Till I get it. तो जब तक मुझे नहीं मिला मेरी,
1: you know, I had state of mind an altercation with my daughter. Actually, I don't want to talk about it, but then that happened. She wanted different colored lenses, you know, and why? Because she had seen in the ad, and this was like, I want them. I need them.
0: You know? No, it's not I need them, I want them.
1: I want them, yes, you know. Because what for? Everyone else has them.
0: ठीक है. तो फिर उसके लिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा हो सकता है, घर में झगड़ा भी. फिर सपोज वो आ गया तो वेरी हैप्पी. कितने दिन
1: गुम, अगले दिन गुम जाते हो जी.
0: दो दिन के बाद कोई नया ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम, सो वी हैव टू बी नॉट सेइंग दैट वी डोंट वांट दीज ऑब्जेक्ट्स. भले घर में जितना खरीदना है खरीदते जाएं, लेकिन कई बार तो इन चीजों के पीछे ही घर में स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है कि मेरे घर में ये नहीं है, उनके घर में है, या हमारे पास ये होना चाहिए. तो ला तो खुशी के लिए रहे हैं, लेकिन क्रिएट क्या कर रहे हैं इन द प्रोसेस. जब वो आ जाएगा बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें हमें क्या देती हैं. इट्स बी वेरी क्लियर, ये हमें आराम देती हैं, आराम देने के लिए बनी है, शरीर को आराम देने के लिए बनी है, मन को आराम देने के लिए ये नहीं बनी थी. और ये शरीर को आराम देने के साधन इकट्ठे करने में कहीं ना कहीं हम मन को तंग कर रहे हैं सारा दिन. यू नो, आई क्रिएट पेन, जेलसी, कॉम्पिटिशन, एवरीथिंग जस्ट सो दैट आई acquire these objects. तो ये तो comfortable हो गया. That's one part of the story. इसका क्या हाल है? और फिर इसको तो अगले दिन, ये तो comfortable रहेगा, जितना दिन कुर्सी पर बैठेगा comfortable रहेगा, इसके comfort का ध्यान रखने का क्या? तो जितना ध्यान शरीर के comfort का रखते हैं उतना ही ध्यान, इसीलिए हमने कहा साथ साथ मन को कंफर्टेबल करने का क्या.
1: तो हमारी ये इच्छा रखना कि मुझे ये चाहिए, वेरी ट्रू. वन थिंग विच यू सेड विच वी नीड टू एक्चुअली थिंक अबाउट, कि हम जो चीज़ें चाह रहे हैं वो हमें क्या देंगी, पहले इस पर हमें क्लैरिटी रहे. यू नो, बिकॉज दिस इज अंडरलाइन.
0: यू नो, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से
1: समझ
0: यूज करती है. दे आर वेरी गुड साइकाइट्रिस्ट आई फील. जो भी एड बनती है वो क्या दिखाती है, कि ये जब आप ऑब्जेक्ट खरीदते हैं आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश हो जाएगी, आपके बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे, आपका रूठा हुआ हस्बैंड आपसे खुश हो जाएगा. नाउ दिस प्लेज विद माय साइकोलॉजी एंड आई से ओके, इफ आई आल्सो गेट दिस, मेरे भी ये जो सारे लोग हैं ना ये खुश हो जाएंगे. तो एक चीज है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों को जो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वन इज फॉर फिजिकल कम्फर्ट, वेरी गुड, बट रिमेम्बरिंग खुशी नहीं देगी. दूसरा है लोगों को खुश करने के लिए हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि यू नो, अगर मैंने ये खरीदा तो मेरा परिवार खुश हो जाएगा. एक बार रुक कर चेक करना पड़ेगा उनका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है आजकल. बच्चों का कितने दर्द में है वो बच्चे आज. नोबडी इज लुकिंग एट दैट. हम रोज शाम को घर आते आते उनके लिए कोई एक प्ले स्टेशन, कोई ये वीडियो गेम, कोई ये ले आते हैं, सोचते हैं कि ये दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे.
1: एक्चुअली वो थोड़ी देर के लिए वो
0: हो जाते हैं. एग्जैक्टली. जैसे हम, अगर मैं खाली हाथ आ रही हूँ तो उन्होंने तो गुस्सा करना है, आप आए इतने लेट, मुझे आज मेरे स्कूल में वो था, प्रोग्राम था, आप आए नहीं, व्हाटएवर. सो आई गेट वन प्ले स्टेशन व्हाइल कमिंग फ्रॉम वर्क, उनको दे दिया. वो भूल गए उस बात को, वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए, उसको खेला, हमें लगा हमने उनको खुशी दी. हमने उनको थोड़ी देर के लिए एक स्टिमुलेंट दिया, उल्टा हमने उनको और भी उस प्रोसेस से हटा दिया कि खुशी कैसे क्रिएट करनी है. हमने उनको एडिक्शंस की तरफ लेकर गए कि जितनी ये चीजें आपके पास आती जाएंगी आपको खुशी मिलेगी. फिर कल हम बाद में मुड़कर कहते हैं इनकी तो डिमांड्स ही नहीं खत्म होती, ये रोज नई नई चीजें मांगते हैं. सिखाया हमने ही था कि ये कैसे लाना. सो वन इज टू गिव हैप्पीनेस टू फैमिली. डिजायर बहुत प्योर है, हमें ये याद रखना पड़ेगा. इट्स नॉट दैट वी आर बैड और व्हाटएवर, हमारी इंटेंशन बहुत प्योर है, लेकिन तरीका समवेयर
1: हमने खुद के लिए भी तो यही रखा ना. See, somewhere we need to understand. So actually, हम गलत नहीं कर रहे क्योंकि हमने यही समझा कि खुद को खुशी देने के लिए भी तो मैं साड़ी खरीद के लाऊंगी या मैं एक नई ड्रेस खरीद के, शॉपिंग में बहुत दुखी हूँ, so I'll just go and buy something good, you know, like, and I bought something good, or I'll go out.
0: It definitely, ये जो buying something good की चीज है, ये हमें थोड़ी देर के लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट करती है, लेकिन साड़ी नहीं क्रिएट करती है. मैं क्रिएट करता हूँ एट द थॉट ऑफ हैविंग बॉट दैट साड़ी. आपने अभी इतनी सुंदर ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन वो साड़ी के पास फीलिंग्स थोड़ी है आपको देने के लिए. यू आर फीलिंग गुड
1: बिकॉज आई ओन दिस और व्हाट,
0: यू अचीव्ड इट. आपने कुछ खरीदा, आपको वो अच्छा लगा, यू वर एबल टू बाय इट, आपने लिया. ये एक पहले थॉट क्रिएट करती है. फिर आपको चार लोग जरूर मिलेंगे जो बोलेंगे न्यू साड़ी कहाँ से ली, बहुत अच्छे लग रहे हो. आपको और वो खुशी मिलती
1: है, वैल्यू मिल गई, यू नो.
0: साड़ी इतनी देर में कुछ भी नहीं कर रही है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है. लेट्स बी वेरी क्लियर, जिसके पास फीलिंग्स ही नहीं है वो मुझे फीलिंग कैसे दे सकता है. अब चार लोगों के बाद एक पांचवें इंसान ने आकर अगर कह दिया कनुप्रिया दिस कलर आई डोंट नो whether it's looking very good on you.
1: I don't like him then.
0: You don't like him and you doubt the sari also.
1: Yes,
0: after
1: oh God, is it right or not?
0: See, sari वही की वही है लेकिन feelings change हो गई. तो feelings मैं create कर रही हूँ. First कि मैंने साड़ी खरीदी या गाड़ी खरीदी या नया मोबाइल जो लॉन्च हुआ है वो खरीदा उसकी अचीवमेंट की थॉट जो मैं क्रिएट करती एंड ऑपोजिट ऑफ दैट मैं नहीं खरीद पाती अगर
1: तो वो भी मैं
0: तो उसकी फेलियर की थॉट जो मैं क्रिएट करती वो मुझे दुख देता है. मैं नहीं खरीद पा रही हूँ मेरे आसपास के सब लोग ये खरीद पा रहे हैं. सपोज एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ 20,000 का है लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो तो वही पुराना वाला है उसमें वो गाने नहीं बजते या जो भी फीचर्स है नहीं है. सबके पास दूसरा वाला है मोबाइल नहीं खुशी दे रहा लेकिन ये फीलिंग सबके पास है मेरे पास नहीं है. फिर जिस दिन मैंने खरीद लिया जो सबके पास है वो मेरे पास या मेरे पास जो है
1: वो किसी के
0: औरों से भी ज्यादा अच्छा है. एंड देन शोइंग इट टू एवरीवन नॉट मे बी टू एवरीवन बट एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ के मेरे पास वो है. ये सब फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं. मोबाइल क्या कर रहा है उसके पास पावर कहाँ है फीलिंग क्रिएट करने की. लेकिन मैं क्योंकि वो मोबाइल खरीदने के बाद वो फीलिंग क्रिएट कर पाती हूँ तो आई थिंक कि मोबाइल मुझे खुशी दे रहा है. मोबाइल कैसे देगा उसके पास तो है नहीं.
1: हाँ एक्चुअली वेयर वी रीच्ड इज कि मैंने ये समझा था कि गाड़ी के कारण मुझे खुशी मिल रही है तो गाड़ी क्योंकि चैतन्य तो नहीं है कॉन्शियस नहीं है कॉन्शियस बींग नहीं है मटेरियल है वो कुछ भी नहीं दे सकती मुझे.
0: फिजिकल कंफर्ट
1: यस फिजिकल कंफर्ट दे सकती है जरूर लेकिन खुशी जो है वो मैं खुद क्रिएट करती हूँ. अनहैप्पीनेस है वो भी मैं खुद क्रिएट करती
0: हूँ. एब्सोल्युटली ना. अभी सपोज आपके पास इतनी सुंदर ब्लू साड़ी है मैं तो नहीं ले सकती. लेट्स से मैं व्हाइट साड़ी पहना मुझे तो अलाउड नहीं है ब्लू साड़ी पहनना. अब ये सोच सोच के मैं अंदर परेशान होती सो लकी कनुप्रिया तो ब्लू भी पहन सकते हैं रेड भी पहन सकते हैं. आई एम वेयरिंग ओनली व्हाइट तो ये व्हाइट साड़ी थोड़ी दुख दे रही है मेरे को बैठकर. लेकिन मैं जो सोच रही हूँ उसको आपको देखकर अपने को देखकर औरों को मैं जो सोच रही हूँ आपको देखकर आपने जो जो अचीव किया मैं नहीं अचीव कर पाई तो दिस इज क्रिएटिंग माई दुख. Then I get into this competition race कि इनके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए क्योंकि जब वो मेरे पास आएगा तब मेरे पास खुशी आएगी. No, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा. मैं क्रिएट कर रही हूँ. हाँ ये है कि मैं डिपेंडेंट हूँ कि जब वो ऑब्जेक्ट आएगा तब मैं वो अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट करूंगी. लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा वो वाली थॉट्स
1: तो मैं अभी भी क्रिएट कर सकती हूँ.
0: अभी भी क्रिएट कर सकती हूँ. एग्जैक्टली.
1: ओके but how I don't have anything to create something you know
0: so you object doesn't create the thoughts here is
1: no, but
0: the
1: object
0: mobile.
1: has to be there na see sari has to be there so that I create the thought
0: lekin sari pehne ke baad wahi humne abhi dekha char logon ne bola bahut achhi to aapne wo thought create ki ek ne kaha not very nice aapki thought change ho gayi sari to wahi hai you are the creator of the thought aap create kar rahe ho aapke paas power hai to choose kaun si thought create karni hai sari wahi hai.
1: नहीं तो साड़ी हो या ना हो आई कैन क्रिएट अ थॉट कि आई एम हैप्पी मतलब लाइक साड़ी इज देयर ऐसे तो नहीं हो सकता ना. सी ऑब्जेक्ट है आपने कहा
0: साड़ी इज देयर ये थॉट आप नहीं क्रिएट कर सकते लेकिन ये तो थॉट क्रिएट कर सकते हो कि माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साड़ी. माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हैविंग अचीव्ड बाइंग दैट ऑब्जेक्ट. माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट ऑल आई हैव गैदर्ड. माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पीपल थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आई हैव अचीव्ड.
1: बट यहां से शिवानी हैप्पीनेस इज नॉट अ थॉट इट्स अ फीलिंग.
0: या सो जो थॉट क्रिएट होगी फिर ही तो फीलिंग जनरेट होगी ना उसके बाद.
1: दिस इज वी नीड टू टॉक मोर अबाउट इट बिकॉज व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड टुडे इज एक्चुअली a very clear indication कि कोई भी object कुछ भी create नहीं करता है. वो comfort दे सकता है वो मुझे you know like जो जो उसको देने के लिए जो बना है वो दे सकता है. happiness या कोई भी feeling जो है वो खुद नहीं create कर सकता
0: उसके पास है नहीं.
1: हाँ of course this is to we all understand.
0: Yeah, I know we all understand.
1: but ये है कि वो खुशी को अभी तक हम थॉट है ये नहीं मान रहे थे. हमें फीलिंग है लेकिन थॉट के बाद फीलिंग कैसे आती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. और साथ ही कि वो क्रिएट कैसे करना है जो है ही नहीं इन द सेंस कि आई थिंक वी नीड टू रियली टॉक मोर अबाउट इट. बट थैंक यू सो मच आज एक और क्लैरिफिकेशन हुआ कि जिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हम सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, और जो वो मुझे इतनी खुशी दे रहे थे, तो ये क्लियर रखना है वो नहीं दे रहे हैं, मैं खुद अपने आप को दे रहा था. यू नो समवेयर आई वॉज गिविंग इट टू माई सेल्फ. थैंक यू सो मच शांति. बहुत लिबरेटेड फील करते हैं. इनफैक्ट अभी तो मैं फील कर रही हूँ कि वो कोई नहीं दे रहा था, ना तो ऑब्जेक्ट और ना ही कोई सिचुएशन भी. अगर हम देखें आज पूरी बातचीत में, ना मेरी गाड़ी ने मुझे दी, दे नहीं सकता, दे वो कम्फर्ट सकता है. मोबाइल बहुत अच्छे फीचर्स के साथ मेरा कम्फर्टेबल कर देता है बात करना, या कोई भी और मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है मैंने क्रिएट किया उसे खरीदते ही कि मैं खुश हो गई. अगर वो नहीं खरीद पाए तो क्या मैं हर बार यही क्रिएट करूँगी कि मैं खुश नहीं हुई, या कुछ और चीज़ है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ? अगर मैं उसे नहीं भी खरीद पाई तो मैं कैसे वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ? और वो तो सिर्फ थॉट ही रह गया, वो फीलिंग का बदल बनता है, क्योंकि अभी तक मेरे लिए हैप्पीनेस जो था वो एक फीलिंग है. सो हाउ माई थॉट क्रिएट्स माई फीलिंग, ये एक अलग चर्चा का विषय है जिस पर हम बातचीत ज़रूर करेंगे. लेकिन अभी आज की इस बात से जुड़ी कोई आपके मन में बात उठ रही है, प्लीज़ फील फ्री, आप हमें ज़रूर फ़ोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में खुशी के इंडेक्स को देखने के लिए, जांचने के लिए, जहां हमने लो गए वहां हमें हाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लो हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होती है. इसीलिए उसे स्टेबिलिटी पे कैसे लाना है ये प्रयास चलता रहेगा. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधववरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बा राव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़।

हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बा राव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधववरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

विवेकानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप परिचित हुए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप अलग थलग रूप से विकसित नहीं होता। व्यक्ति आज जो है वो उसकी वंश परंपरा और पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का फल है। विवेकानंद को एक संस्कारवान परिवार मिला था, जिसके फल स्वरूप उन्हें उपयुक्त गुरु श्री रामकृष्ण देव मिले और उनके चहुमुखी व्यक्तित्व और शौर्य का विकास हुआ। उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी। निराला था उनका बचपन। बालक नरेंद्रनाथ की सभी बातें निराली थीं। वे चंचल, नटखट, शरारती तो थे, पर साथ ही भावुक भी थे। अगर बालक नरेंद्रनाथ के मन में कोई बात घर कर जाती, तो उसे पूरा किए बिना वे नहीं मानते। कभी-कभी वे चुपचाप किसी सोच में उलझ जाते। उन्हें समय, भूख, प्यास का ध्यान नहीं रहता था।

0: उनका सबसे ज्यादा मनपसंद काम था गाड़ी पर सवार होकर घूमने जाना। उस समय घोड़ा गाड़ी यानी बग्घी का जमाना था।
1: माँ की गोद में बैठकर गाड़ी में से दोनों ओर की चीजें देखते हुए एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछते हुए बालक माता को हैरान कर डालता था।
2: माँ माँ, उधर वह सुंदर बंगला किसका है?
3: वो तो मजुमदार महाशय का है, बड़े नामी वकील हैं वे।
2: अरे अरे, देखो तो माँ, वो आदमी क्या बेच रहा है?
3: उस फल को जामरूल कहते हैं। एक दिन ना मैं तुम्हें वो फल खरीद कर खिलाऊंगी, ठीक है?
2: अच्छा माँ माँ, वो आदमी ऐसे फटे गंदे कपड़े पहनकर लोगों से क्या मांग रहा है?
3: अरे वो तो गरीब भिखमंगा है बेटा, लोगों से पैसे मांग रहा है।
2: क्यों, उसके पास पैसे नहीं है?
3: नहीं बेटा। अरे कोचवान कोचवान, जरा गाड़ी तो रोको जल्दी। लो बिले, उसे ये पैसे दे दो, भूखा लग रहा है।
2: हाँ दो, ये लो बाबा, कुछ खा लेना।
3: चलो चलो कोचवान चलो।
2: माँ लोग गरीब क्यों होते हैं? मेरे पास जब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं इन सबको बांट दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।
3: हाँ बेटा, हमेशा मन में ऐसा ही दया भाव बनाए रखना, गरीबों की मदद करना।
2: अच्छा माँ।
3: ओ बिले, दो घड़ी चुप नहीं रह सकता, चुपचाप बैठे रहो।
0: गाड़ी से नरेन को इतना प्रेम था कि रोज अपने घर के सामने बैठकर आते जाते हर एक गाड़ी को बड़े ध्यान से देखा करते। कोचवान का छाती फुलाकर बैठना, तेज दौड़ते घोड़े की लगाम को खींचकर उसे हांकने का कौशल, उसकी खास पोशाक, चपरास, जरीदार पगड़ी आदि का उसके बालक मन पर विशेष प्रभाव पड़ा। तभी तो एक दिन पिता के ये पूछने पर,
4: बड़ा होने पर क्या बनेगा नरेन, बोल तो।
2: घोड़े का कोचवान बनूंगा।
0: पिता हंसने लगे। कोचवान बनने की आशा से बालक ने अपने पिताजी के बूढ़े कोचवान के साथ मित्रता कर ली थी और मौका मिलते ही अस्तबल में जाकर वो सईफ और कोचवानों के कामों को देखा करता और हजारों सवाल किया करता। सईफ से पूछता,
2: तुम रोज रोज घोड़े की मालिश क्यों करते हो?
5: भैया, इससे घोड़ा ताकतवर और तेज दौड़ने वाला बनता है।
2: अच्छा, तो मालिश करवाने पर मैं भी ताकतवर और तेज तर्रार बन जाऊंगा?
5: हाँ बेटा, खूब मालिश और कसरत करना, फिर देखना तुम्हारा शरीर कितना गठीला बन जाएगा।
1: बालक विवेकानंद को शरीर मजबूत बनाने का पहला पाठ शायद यहीं से मिला था। वो कोचवान से भी सवाल पूछता।
2: कोचवान जी, तुम हर दिन ये किस भगवान की पूजा करते हो?
6: बेटा, ये भगवान राम जी और सीता मैया हैं बेटा, और ये हैं हनुमान जी।
2: तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? हमारे घर के पूजा घर में तो ये मूर्तियां नहीं हैं।
6: अरे तो क्या हुआ बेटा, मालकिन शिव शंकर की भक्त हैं, इसीलिए शिव पूजा करती हैं। पर वे रोजाना रामायण का पाठ तो करती हैं, यही उनकी पूजा है।
0: दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण तथा महाभारत की कथा होती थी। भुवनेश्वरी देवी स्वयं या कोई और महिला

0: घर का काम खत्म कर दूसरी स्त्रियां पाठिका को घेर कर बैठ जाती। इसी छोटी सी महिला सभा में बालक नरेंद्र शांत होकर माँ की गोद में बैठा रहता। अक्सर भुवनेश्वरी देवी बेटे को गोद में बैठाकर सीताराम की कहानी, महाभारत की कथा या अन्य पौराणिक कहानियां सुनाया करती।
1: इसमें संदेह नहीं कि पुराणों की कहानियों का बालक के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। सुदूर अतीत युग के धर्मवीरों की पवित्र जीवनियां सुनकर उसके शिशु हृदय में ना मालूम भावों की क्या क्या लहरें उठा करती, जिससे वह अपनी स्वाभाविक चंचलता छोड़ घंटों मंत्र मुग्ध जैसा बैठा रहता था। रामायण सुनते सुनते नरेंद्र का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण हो उठता।
0: एक बार उनके घर के पास ही मेला लगा था। बालक नरेंद्र अपने घर के पुराने नौकर रामू और दोस्तों के साथ मेला देखने गया था।
2: झूला झूला ताने में झूला झूला ये प्यारी प्यारी सी रसभरी जली मिले लो, ये रसभरी जली मिले लो तो कई जली मिले लो।
3: अरे अरे मुन्ना, जरा इधर तो आ, झूला बाद में झूल लेना।
4: अरे तू इधर आ जा।
3: नहीं, मुझे उस ऊंची चक्री पर नहीं घूमना, तू पहले इधर आ। ये देख कितनी सुंदर मूर्तियाँ बिक रही हैं। ये शिव की मूर्ति? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, घर में है तो। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण की? नहीं, ये भी नहीं, मुझे वह दिखाओ। ये कौन है?
5: राम जी और सीता मैया हैं।
3: दिखाओ दिखाओ। हाँ, मुझे यही मूर्ति चाहिए। रामू काका, रामू काका, इसे पैसे दे दो ना, मुझे यही मूर्ति खरीदनी है।
6: क्या करोगे बेटा इस मूर्ति का? चलो जलेबी खरीद देते हैं तुम लोगों को।
3: जलेबी वाले भी मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मुझे तो बस यही मूर्ति चाहिए।
6: ठीक है, अच्छा बाबा अब जिद कर रहे हो तो ले लो। लो भैया ये पैसे ले लो। अच्छा कितने का है? हाँ? 2 पैसा? अरे नहीं, ये तो 1-1 पैसे में बिकता है।
3: रामू काका मांग रहा है तो दे दो ना 2 पैसे, गरीब है बेचारा।
6: हाँ, गरीब है बेचारा, अरे बहू जी नाराज होंगी।
3: नहीं नहीं, मैं माँ को समझा दूंगा, तुम तो ले लो।
6: अच्छा ले लो भैया 2 पैसे। हाँ नहीं तो लूट मार मचा रखा है, अब बच्चा जिद कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो ठीक से कागज में लपेट कर बांध दो।
7: हाँ बांधता हूँ, रुक जाओ।
6: अरे मिट्टी का है ना, टूट ना जाए। चलो दे दो, चलो बेटा ले लो, चलो चलो चलो चलो।
1: मूर्ति लाकर नरेंद्र ने मकान के छत पर एक सुनसान कमरे में उसकी स्थापना कर दी। रोज उस मूर्ति के सामने ध्यान मग्न होकर बैठा रहता बालक नरेंद्र। सीताराम के प्रति बालक का यह प्रेम उनके पश्चिम देशीय कोचवान मित्र को बहुत आनंददायक लगा। सीताराम के बारे में बालक के हजारों प्रश्नों का जवाब वह प्रसन्नता पूर्वक देता था।
3: अच्छा, राम जी को राक्षसों से डर नहीं लगता था?
8: नहीं बेटा, वे तो बहुत वीर और साहसी थे। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में उत्पाद मचाने वाले सारे राक्षसों को राम जी ने मार भगाया था, और उस समय वे तुमसे थोड़े ही बड़े रहे होंगे।
3: अच्छा, अगर मैं धनुष विद्या सीख लूं तो क्या मैं भी राक्षसों को मार सकूंगा?
8: हाँ हाँ मेरा राजा बेटा, बड़ा होकर न जाने कितने राक्षसों से लड़ेगा, उन्हें मार भगाएगा।
3: पर राम जी जंगल में क्यों चले गए? मना क्यों नहीं किया? उन्हें डर नहीं लगा क्या?
8: बेटा, राम जी माता कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, और पिता दशरथ को तो वे देवता समान पूजते थे। इन दोनों का कहा भला वे कैसे न मानते? माता पिता की भक्ति करना तो कोई राम जी से सीखे।
3: अच्छा, जंगल में वो लोग खाते क्या थे? उनके साथ क्या कोई रसोईया भी गया था?
8: नहीं बेटा, वे तो खाली हाथ ही चले गए थे। जंगल में फल फूल खाकर ही गुजारा करते थे।
3: अच्छा, राम जी इतना अच्छा धनुष चलाते थे तो वे सोने के हिरण को पकड़ क्यों नहीं पाए?
8: बेटा, अब वो कोई असली हिरण थोड़ा ही था, वह तो माया थी माया। और राम जी को रावण का वध करना होगा, लोगों को उसके अत्याचार से बचाना होगा। यह सब तो पहले से ही तय था, तभी तो यह माया हिरण का दिखना, सीता हरण और राम रावण का युद्ध हुआ।
3: अगर राम जी सीता को साथ ना ले जाते तब तो यह सब झंझट ही नहीं होता।
0: कोचवान किसी कारणवश शादी विवाह के खिलाफ था। उसने नरेन को समझाया।
8: अब क्या बताएं बेटवा, ये औरतें ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। न जाती सीता मैया तो राम जी को इतना परेशान न होना पड़ता।
1: कोचवान ने विवाहित जीवन की अशांति का ऐसा जीता जागता वर्णन किया कि बालक नरेंद्रनाथ के सुकुमार चित्त पर उसकी छाप गंभीर रूप से अंकित हो गई। उसके मन में अनेक चिंताएं उठने लगी और बेचैन होकर आंखों में आंसू भरे वे माँ के पास आए। आंसू देखकर माँ ने पूछा,
9: क्या हुआ बिले, किसी ने कुछ कहा क्या?
3: माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा।
9: क्यों, अचानक ऐसी बातें क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे मालूम है शादी होने के बाद आदमी को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
0: नरेन ने माँ को कोचवान से सुनी हुई सारी बातें कह दी।
9: ठीक है बाबा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी कौन तेरी शादी करवा रहा है, जब बड़ा होगा तो देखी जाएगी। जा, अब जाकर खेल, ये कोचवान भी।
3: मेरी शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो दूसरी बात से परेशान हूँ।
9: अब कौन सी बात लेकर परेशान है?
3: मैं राम सीता की पूजा कैसे करूँ, सीता तो राम की पत्नी थी ना।
9: अरे बिले, तू तो मुझे पागल ही कर देगा। तू और तेरे सवालों का जवाब देते देते तो मैं आ इधर आना मेरे पास, आजा, आंसू पोंछ ले, आ ला, मैं पोंछ देती हूँ। ले बेटा, आजा आजा मेरा बच्चा। राम सीता की पूजा न भी करो तो क्या है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा।
0: नरेन कमरे से निकल आया। उसका मन अब तक शांत नहीं हुआ था। वो छत के कमरे से अपनी प्रिय राम सीता की मूर्ति को हाथों में उठा लाया और छत पर आकर खड़ा हो गया। संध्या हो चली थी। नरेन हाथों में मूर्ति लिए कुछ सोच रहा था। अंततः वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा,
3: माफ करना राम जी, माफ करना सीता मैया, मैं आप दोनों का भक्त हूँ, श्रद्धा भी रखता हूँ, पर विवाहित जीवन वो मेरा आदर्श नहीं है, मैं आप दोनों की पूजा नहीं कर सकता।
0: कहते कहते वो व्याकुल हो उठा और मूर्ति को माथे से लगाकर नीचे फेंक दी।
1: दत्त भवन में अरसे से माने जाने वाले देशाचार और लोकाचार के छोटे छोटे नियमों को नरेन बचपन से ही नहीं मानता था। माँ के डांटने पर वो तुरंत उन नियमों का कारण पूछ बैठता।
9: ए, ए बिले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? भात खाते खाते बदन पर हाथ लगा रहा था।
3: क्यों, क्यों नहीं लगा सकता, इस थाली में क्या बुराई है?
9: अरे वो भात की थाली है, झूठा है ना?
3: झूठा, भात थाली में डालने से थाली झूठी हो जाती है?
9: हाँ।
3: तो भात पेट में जाकर शरीर को भी झूठा कर देता है, फिर तुम मेरे झूठे शरीर को गोद में लेकर प्यार कैसे करते हो?
9: बिले, बकवास मत कर, जो कहती हूँ सुना कर।
3: अच्छा माँ, तुम भी तो भात खाती हो, फिर उस झूठे शरीर से शिवजी की पूजा कैसे करती हो?
9: सुन लो इसकी बातें, चल खा लिया ना, चल चल उठ उठ, चल पानी पी ले। अरे अरे अरे अरे अरे अरे, बाएं से नहीं, दाहिने हाथ से गिलास पकड़।
3: क्यों, अब बाएं हाथ में क्या हुआ? खाना तो दाहिने हाथ से खाया ना, और फिर बाएं दाएं में क्या फर्क है?
9: बहुत फर्क है, कोई भी अच्छा काम बाएं से नहीं किया जाता, समझे? हमेशा दाहिने हाथ से ही पानी पिया जाता है।
3: नहीं, मैं तो बाएं से ही पीऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। क्या तुम्हारे शिव जी नाराज हो जाएंगे?
9: ओह, अब तेरे साथ कौन मुंह लड़ाए, चल उठ जा, उठकर दोनों हाथों को अच्छी तरह धो ले, चल चल चल चल चल, आ जा।
0: बालक नरेंद्र का मन एक ही तरह के खेल कूद में नहीं लगता था, वो हमेशा वैचित्र में नए नए खेलों की इजाद करते रहते थे। उनके साथी भी प्रबल उत्साह के साथ अपने नेता के साथ नए खेलों में जुट जाते। एक बार नरेंद्र का मन पुराने खेल से ऊब गया। उन्होंने झिल्ली कागज का एक रंगीन लालटेन बनाया और उसके अंदर मोमबत्ती जलाकर दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर दोस्तों का मनोरंजन करने लगे। शाम को जब घरों में लालटेन जलाया जाता तो वे भाई बहनों को दीवार पर हाथों की परछाई से कई तरह के जानवरों और चिड़ियों की आकृतियां बनाकर दिखाते थे।
1: इसी समय उनके मन में पाक विद्या सीखने का विचार आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जिससे जितना बन सके रसोई का सामान इकट्ठा कर लाए। सभी एक दो आलू बैंगन आदि घर से ले आए। ज्यादातर सामान चूल्हा कड़ाही बर्तन और तेल मसाला नरेंद्र अपनी रसोई से मांग लाए। दोस्तों ने मिलकर बड़े उत्साह से खाना पकाया और उस अधपके भोजन को बड़े चाव से खाया। कहना ना होगा कि नरेंद्र ही प्रधान रसोईया बने और दूसरे बच्चों ने उनकी सहायता की।
0: यद्यपि बालक नरेंद्र नाथ शरारत करने में सबसे आगे थे, पर उनमें अशुभ या अन्याय की कोई मनसा नहीं होती थी। उनका सहज सरल स्वभाव सांसारिक कुटिलताओं से दूर रहता था। सत्यवादिता उनके जीवन का सार था। भले ही वे दिन भर विभिन्न खेलों और हास्य विनोद में मग्न रहते, पर रात को उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन प्राप्त होते, जिक्र उन्होंने बड़े होने पर किया था। जैसे जैसे नरेंद्र की उम्र बढ़ी, उनकी मानसिकता में एक सुस्पष्ट परिवर्तन देखा गया। वे अब बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया, नियमित रूप से अखबार पढ़ने लगे और किसी के साथ भी सार्वजनिक भाषण सुनने जाते, और जो कुछ सुनाते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने दोस्तों को सुनाते। वे लोग कुछ समझते कुछ नहीं समझते, पर नरेंद्र की बातें वे चमत्कृत होकर सुनते। इस तरह उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था।
1: बचपन में एक बार नरेंद्र के साथ उनके एक सहपाठी की मारपीट हो गई थी। नरेंद्र टिफिन में मिठाई लाए थे। उनके सहपाठी ने, जो उनसे उम्र और ताकत में बड़ा था, नरेंद्र के हाथ से मिठाई छीन ली। मारा मारी शुरू हो गई। नरेंद्र मिठाई वापस नहीं ले पाए और भयंकर नाराज हो गए। मास्टर साहब को शिकायत करने पर उन्होंने समझाया,
5: छी छी छी छी छी छी नरेंद्र, तुम इतने बड़े घर के बेटे हो, तुम्हें एक मिठाई के लिए मारा मारी करना शोभा नहीं देता। फिर वह लड़का किस घर का है, उसकी छीनी हुई मिठाई क्या तुम दोबारा खा सकते थे?
3: क्यों क्यों नहीं खा सकते थे? वह मुझसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं जीत नहीं पाया। नहीं तो क्या मैं उसे वह मिठाई खाने देता?
5: नरेंद्र, कहा ना, उसका छुआ तुम नहीं खा सकते।
3: क्यों क्या है, क्या है उसके हाथों में? उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकता?
0: नरेंद्र नाथ ने अपने संपूर्ण जीवन में ये सब आचार व्यवहार छुआ छूत कभी नहीं माना। बड़े होने पर एक बार इस दाएं बाएं झूठा और छुआ छूत के प्रसंग में भयंकर नाराज होकर कहा था,
10: आप लोगों का पूरा ध्यान इन्हीं तुच्छ विषयों में ही लगा है कि हम पानी किस हाथ से पिए, किस किस को हम छू सकते हैं और इन नियमों के भंग होने पर कौन कौन से प्रायश्चित होने चाहिए। पहले तो हम भगवान का निवास ऊपर स्वर्ग में या नीचे मानव हृदय में समझते थे, पर अब जान पड़ता है कि वे रसोई घर व रसोई के बर्तनों में निवास करने लगे हैं। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है उदार बनना और कूप मंडूकता को त्याग कर बाहर आना, आत्मसात करना और खुद को सार्वभौमिक बना देना। पर हम तो अपने को नित्य लघुतर बनाते जा रहे हैं और शास्त्रों के आदेश के विपरीत अपने को सबसे अलग करते जा रहे हैं। हम अपने देशवासियों से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में बंटकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मुक्ति? मुक्ति अलगाव में नहीं जुड़ाव में है। अपनी मुक्ति चाहते हो तो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, देश की समाज की मुक्ति होगी, देश की समाज की मुक्ति होगी।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट टच.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम सब इस नियम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम जमीन में जिस चीज का बीज डालेंगे फसल भी हमें उसी की मिलेगी। अगर हम कड़वे नीम का बीज बोएंगे तो मीठे फल की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। लेकिन जब जीवन जीने की बात आती है तो हम इसे सीधे से नियम को भूल जाते हैं हम दिन रात अपने भीतर नफरत, ईर्ष्या, चालाकी और वासनाओं के बीज बोते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि बदले में हमें सुख, शांति और परम आनंद का फल मिले। जब ऐसा नहीं होता तो हमारे जीवन में दुखों और चिंताओं की कड़वी फसल कटने लगती है तो हम अपनी किस्मत को या भगवान को दोष देने लगते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी कर्म सिद्धांत की गहराइयां समझा रहे हैं। इस पूरे खेल के पीछे छिपे असली अपराधी यानी हमारे मन को पकड़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अनोखा सूत्र। कबीर मारो मन को टुक टुक भय जाई, कबीर मारो मन को टुक टुक भय जाई, विषय की क्यारी बोई करी, लुणत कहाँ पछिताई।

0: श्रोताओं, कबीर साहब साधक को एक अत्यंत कठोर और दृढ़ निर्देश देते हुए कहते हैं, कबीर मारो मन को, हे साधक, तू अपनी सजगता और विवेक के प्रहार से इस चंचल और भटकाने वाले मन को पूरी तरह मार डाल, शांत कर दे, टुक टुक वह जाए। इस मन के अहंकार को, इसी वासनाओं को कुचल कर टुक टुक यानी टुकड़े टुकड़े कर दो, ताकि यह फिर से तुम्हें बहका न सके। वे मन को मारने के लिए इतनी कड़वाहट से क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में इसके पीछे का अचूक तर्क देते हैं। विषय की क्यारी बोई करी, कबीर कहते हैं कि इसी मन में अज्ञान के वश में होकर संसार में विषय यानी विषय वासनाओं, लालच और सांसारिक प्रपंचों की क्यारी बोई थी। तुम खुद ही इसके बोने वाले हो, लूणत कहाँ पछिताई। और जब उस बोए हुए कर्मों को लूणत यानी काटने का, उनके दुखों को भुगतने का समय आया है, तो अब रोने और पछताने से क्या लाभ। जब बीज तुमने ही कड़वा बोया था तो फसल भी कड़वी ही काटनी पड़ेगी। यह दोहा कर्म विपाक और मनोनाश की साधना का अद्भुत निचोड़ है। भारतीय दर्शन में माना गया है कि हमारे सारे दुखों का मूल कारण हमारा मन ही है, क्योंकि मन की इच्छाओं ही कर्म की दिशा तय करती हैं। कबीर यहाँ मन को मारो कहकर मन को नष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मन की उस मूर्छा और अहंकार को तोड़ने की बात कर रहे हैं जो मनुष्य को गलत रास्तों पर ले जाती हैं। लूणत कहाँ पछिताए, इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति का नियम न्यायपूर्ण और अकाट्य है। आप प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। अगर वर्तमान में शांति चाहिए तो मन की उन वृत्तियों को भी रोकना होगा जो भविष्य के दुखों का बीज बो रहे हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी जिंदगी की क्यारी को देखिए। आज हमारे जीवन में जो भी अशांति है, जो भी तनाव या कड़वाहट है, उसे बहुत ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए कि इसके बीज हमने अतीत में कहाँ बोए थे। कितनी बार हमने अपने स्वार्थ और मन के बहकावे में आकर दूसरों को दुख पहुँचाया या व्यर्थ के प्रपंच इकट्ठा किए। आज कोशिश कीजिए अपने इस मन के बहकावे में न आने की। होश का ऐसा पहरा बिठाइए कि यह मन आपके भीतर कोई गलत बीज ना बो सके। अपनी पुरानी आदतों को विवेक से शांत कीजिए और अपने भीतर खेत में राम नाम का, प्रेम और करुणा का अनमोल बीज बोना शुरू कीजिए। जब बीज अमृत का होगा तो फल भी आनंद और मुक्ति का ही कटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: बात तथागता, योर ऑब्सेशन, योर स्टडी डीप डीप डीप, एंगर हेट्रेड बिहाइंड योर इटर्नल सर्च, ऑल ऑब्स्टैकल्स ऑफ सिडक्शन ऑफ लस्ट यू कट ऑफ, कार्नल कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसेंडेंटल एंड स्टूड अगेन एंड अगेन एज अ विटनेस ऑफ इम्परमनेंस। बात तथागता, द न्यूज यू हर्ड दैट द इशू ऑफ वाटर शेयरिंग बिटवीन शाक्य कोलिया केम टू एन एंड, द स्ट्राइप बिटवीन शाक्य कोली फिनिश बट कुड योर जर्नी फॉर इन्वेंशन कम टू एन एंड नो नेवर यू मेडिटेटेड रिपीटेडली विद न्यू स्पिरिट यू कन्फ्रंटेड अगेन फॉर न्यू इन्वेंशन इन्वेंशन ऑफ ट्रुथ फॉर ग्रैस्पिंग इटर्नल फिलॉसॉफी किंग बिंबिसार केम एंड सेड योर हैंडसम फॉर्म इजंट ऑफ अपरिव्राजक द 32 साइंस ऑफ योर हैंडसम बॉडी दोज लॉन्ग आर्म्स दोज ब्यूटिफुल टिथ एंड द गोल्डन रेडियंस ऑफ हीरोइक एम्पीरियल सेड ही गिव अप दिस पाथ Material pleasures will fall at your feet. Ba Tathagata, you replied firmly, while the world's strife and sorrows are in front of me, for research, material pleasures are not approachable to me. King Bimbisar was speechless and said, meet me after your enlightenment. The Parivrajak Siddharth came to the monastery of Brihi Rishu. He observed traditional sadhana. You also went to the monastery of Alar Kalam at Vaishali. You met Uddar Karamput. Gautama's proceed with the Sankhya philosophy. He sought into the knowledge of Samadhi ways, Prajna, Jnan, entrenchment. Sternly learned dispassion, pain physically. Slept on thrones, open air in winter, in the scorching summer, sun, under rains in rainy seasons, tired yourself physically. But knowledge that does not conquer the passions of the mind that toils the body in all these ways is rare. Ba Tathagata, your meetings are of thought philosophy. Discussion with many rishis, the hymns, chants, rituals you access, charms between blind beliefs, beliefs, worship of various natural elements, Kapil, philosopher, Anisian philosopher of Sankhya philosophy said, while seeking truth, evidence required, then and only then, it is concrete truth for seeking truth. Assume two ways, first-hand knowledge and inference. The remaining are ideas, rituals, full-fledged blind beliefs, game of mind in their own ways for the pursuit of knowledge. Brahman, Vedas, Upanishads, you may feel unrequired hymns of Vedas, the techniques of Upanishads, you may feel vain. Ba Tathagata, your contemporary was Purna Kashyap, who presented a Kriyavad activism, said actions don't affect the soul. Killing, get killing done. Stealing, get stealing done. Treachery, get treachery done. Telling lies, compelling to tell lies. Adultery, getting adultery done are not sinful acts. The soul is unaffected of virtues or vices after that and told there nothing remains.
3: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM. ऑलवेज
4: वचन बिना सुख शा

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला के साथ इन दिनों हम आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, यानी कि मेरी खुशी कितनी बार दिन में ऊपर होती है, कितनी बार नीचे। तो क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि मेरी जो हैप्पीनेस है या मेरा खुशी का जो क्वेश्चन है वो स्टेबल रहे? ये कैसे संभव है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जब खुशी की बात करते हैं तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने बहुत सी बातें की जो जीवन से जुड़ी थी, मेरी खुशी से जुड़ी थी। हमने ये देखा कि खुशी जब लोगों पर डिपेंड कर रही थी कि वो खुश होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बॉस है, तो मैं खुश हो रही थी। अगेन वो डिपेंडेंसी जो थी, और वो कहीं ना कहीं उनका खुश होना या ना होना मेरे किसी बात से मेरा अपना फेलियर बन रहा था और मेरी अप

0: थी कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया कि ये मुझे मिल गया है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी तक बात ये हो रही थी, ज़्यादातर लोग जो हम जो सोचते हैं वो ये कि खुशी एक फीलिंग है, तो क्रिएट करना और नॉन क्रिएट करना थॉट कैसे होगा फिर? सो यहाँ से आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है?
1: गुड वन। खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? खुशी ऑब्वियसली एक फीलिंग है, इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट आई गो थ्रू। अब लेकिन ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए सोर्स तो चाहिए ना। फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है? यस, इट्स अ फीलिंग। आई एक्सपीरियंस बहुत सारी फीलिंग्स सारा दिन के अंदर, कभी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कभी आई एक्सपीरियंस पेन, कभी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। लेकिन ये फीलिंग्स किस आधार पर मैं अनुभव करती हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन उस पल मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया है।
0: ओके, आई सी अ फ्लावर, बहुत सुंदर एक फूल देखा मैंने।
1: इट डजंट गिव, इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, राइट?
0: इट गिव्स मी सो मच ऑफ अ, यू नो, लाइक सच नाइस फीलिंग।
1: पहले आप एक थॉट क्रिएट करते हो, कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर है।
0: मुझे तो पता भी नहीं कि मैं करती हूँ।
1: अगर किसी को वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा, अब वही फ्लावर आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है, आई मे बी कि मैं उसको क्रॉस करके चले जाऊं और मेरे को कुछ लगे ही ना। फ्लावर तो वही है, मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी, यू नो। आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को

करके चले जाऊं और मेरे को कुछ लगे ही ना. फ्लावर तो वही है, मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी. यू नो आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को

डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधववरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलु। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित दीवी गोपाल चारलु का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बा राव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधववरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भेषज रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

विवेकानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप परिचित हुए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप अलग थलग रूप से विकसित नहीं होता। व्यक्ति आज जो है वो उसकी वंश परंपरा और पारिवारिक तथा

0: बालक नरेंद्रनाथ की सभी बातें निराली थीं। वे चंचल, नटखट, शरारती तो थे, पर साथ ही भावुक भी थे। अगर बालक नरेंद्रनाथ के मन में कोई बात घर कर जाती, तो उसे पूरा किए बिना वे नहीं मानते। कभी-कभी वे चुपचाप किसी सोच में उलझ जाते। उन्हें समय, भूख, प्यास का ध्यान नहीं रहता था। उनका सबसे ज्यादा मनपसंद काम था गाड़ी पर सवार होकर घूमने जाना। उस समय घोड़ा गाड़ी यानी बग्घी का जमाना था।
1: माँ की गोद में बैठकर गाड़ी में से दोनों ओर की चीजें देखते हुए एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछते हुए बालक माता को हैरान कर डालता था।
2: माँ, माँ, उधर वह सुंदर बंगला किसका है?
3: वो तो मजुमदार महाशय का है। बड़े नामी वकील हैं वे।
2: अरे अरे देखो तो माँ, वो आदमी क्या बेच रहा है?
3: उस फल को जामरूल कहते हैं। एक दिन ना मैं तुम्हें वो फल खरीद कर खिलाऊंगी, ठीक है?
2: अच्छा माँ, माँ वो आदमी ऐसे फटे गंदे कपड़े पहनकर लोगों से क्या मांग रहा है?
3: अरे वो तो गरीब भीखमंगा है बेटा, लोगों से पैसे मांग रहा है।
2: क्यों, उसके पास पैसे नहीं है?
3: नहीं बेटा। अरे कोचवान, कोचवान जरा गाड़ी तो रोको जल्दी। लो बिले, उसे ये पैसे दे दो, भूखा लग रहा है।
2: हाँ दो, ये लो बाबा, कुछ खा लेना।
3: चलो चलो कोचवान चलो।
2: माँ लोग गरीब क्यों होते हैं? मेरे पास जब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं इन सबको बांट दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।
3: हाँ बेटा, हमेशा मन में ऐसा ही दया भाव बनाए रखना, गरीबों की मदद करना।
2: अच्छा माँ।
3: ओ बिले, दो घड़ी चुप नहीं रह सकता, चुपचाप बैठे रहो।
0: गाड़ी से नरेन को इतना प्रेम था कि रोज अपने घर के सामने बैठकर आते जाते हर एक गाड़ी को बड़े ध्यान से देखा करते। कोचवान का छाती फुलाकर बैठना, तेज दौड़ते घोड़े की लगाम को खींचकर उसे हांकने का कौशल, उसकी खास पोशाक, चपरास, जरीदार पगड़ी आदि का उसके बालक मन पर विशेष प्रभाव पड़ा। तभी तो एक दिन पिता के ये पूछने पर,
4: बड़ा होने पर क्या बनेगा नरेन, बोल तो।
2: घोड़े का कोचवान बनूंगा।
0: पिता हंसने लगे। कोचवान बनने की आशा से बालक ने अपने पिताजी के बूढ़े कोचवान के साथ मित्रता कर ली थी, और मौका मिलते ही अस्तबल में जाकर वो सईफ और कोचवानों के कामों को देखा करता और हजारों सवाल किया करता। सईफ से पूछता,
2: तुम रोज रोज घोड़े की मालिश क्यों करते हो?
5: भैया, इससे घोड़ा ताकतवर और तेज दौड़ने वाला बनता है।
2: अच्छा, तो मालिश करवाने पर मैं भी ताकतवर और तेज तर्रार बन जाऊंगा?
5: हाँ बेटा, खूब मालिश और कसरत करना, फिर देखना तुम्हारा शरीर कितना गठीला बन जाएगा।
1: बालक विवेकानंद को शरीर मजबूत बनाने का पहला पाठ शायद यहीं से मिला था। वो कोचवान से भी सवाल पूछता।
2: कोचवान जी, तुम हर दिन ये किस भगवान की पूजा करते हो?
6: बेटा, ये भगवान राम जी और सीता मैया हैं बेटा, और ये हैं हनुमान जी।
2: तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? हमारे घर के पूजा घर में तो ये मूर्तियां नहीं हैं।
6: अरे तो क्या हुआ बेटा, मालकिन शिव शंकर की भक्त हैं, इसीलिए शिव पूजा करती हैं। पर वे रोजाना रामायण का पाठ तो करती हैं, यही उनकी पूजा है।
0: दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण तथा महाभारत की कथा होती थी। भुवनेश्वरी देवी स्वयं या कोई और महिला पाठ करती।

0: घर का काम खत्म कर दूसरी स्त्रियां पाठिका को घेर कर बैठ जाती। इसी छोटी सी महिला सभा में बालक नरेन शांत होकर माँ की गोद में बैठा रहता। अक्सर भुवनेश्वरी देवी बेटे को गोद में बैठाकर सीताराम की कहानी, महाभारत की कथा या अन्य पौराणिक कहानियां सुनाया करती।
1: इसमें संदेह नहीं कि पुराणों की कहानियों का बालक के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। सुदूर अतीत युग के धर्मवीरों की पवित्र जीवनियां सुनकर उसके शिशु हृदय में न मालूम भावों की क्या क्या लहरें उठा करती, जिससे वह अपनी स्वाभाविक चंचलता छोड़ घंटों मंत्र मुग्ध जैसा बैठा रहता था। रामायण सुनते सुनते नरेन का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण हो उठता।
0: एक बार उनके घर के पास ही मेला लगा था। बालक नरेन अपने घर के पुराने नौकर रामू और दोस्तों के साथ मेला देखने गया था।
2: झूला झूला दान में झूला झूला हे पेर पेर सी रसभरी जली मिले लो, ये रसभरी जली मिले लो तो कई जली मिले लो।
3: अरे अरे मुन्ना जरा इधर तो आ, झूला बाद में झूल लेना।
4: अरे तू इधर आ जा।
3: नहीं, मुझे उस ऊंची चक्री पर नहीं घूमना, तू पहले इधर आ। ये देख कितनी सुंदर मूर्तियाँ बिक रही हैं। ये शिव की मूर्ति? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, घर में है तो। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण की? नहीं ये भी नहीं, मुझे वह दिखाओ। ये कौन है?
5: राम जी और सीता मैया हैं।
3: दिखाओ दिखाओ। हाँ मुझे यही मूर्ति चाहिए। रामू काका इसे पैसे दे दो ना, मुझे यही मूर्ति खरीदनी है।
6: क्या करोगे बेटा इस मूर्ति का? चलो जलेबी खरीद देते हैं तुम लोगों को।
3: जलेबी वलेबी मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मुझे तो बस यही मूर्ति चाहिए।
6: ठीक है, अच्छा बाबा अब जिद कर रहे हो तो ले लो। लो भैया ये पैसे ले लो। अच्छा कितने का है? हाँ 2 पैसा? अरे नहीं, ये तो 1-1 पैसे में बिकता है।
3: रामू काका मांग रहा है तो दे दो ना 2 पैसे, गरीब है बेचारा।
6: हाँ गरीब है बेचारा, अरे बहू जी नाराज होंगी।
3: नहीं नहीं, मैं माँ को समझा दूंगा, तुम तो ले लो।
6: अच्छा ले लो भैया 2 पैसे। हाँ नहीं तो लूट मार मचा रखा है, अब बच्चा जिद कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो ठीक से कागज में लपेट कर बांध दो।
7: हाँ हाँ बांधता हूँ, रुक जाओ।
6: अरे मिट्टी का है ना, टूट ना जाए। चलो दे दो, चलो बेटा ले लो, चलो चलो चलो चलो।
1: मूर्ति लाकर नरेन ने मकान के छत पर एक सुनसान कमरे में उसकी स्थापना कर दी। रोज उस मूर्ति के सामने ध्यान मग्न होकर बैठा रहता बालक नरेन। सीताराम के प्रति बालक का यह प्रेम उनके पश्चिम देशीय कोचवान मित्र को बहुत आनंददायक लगा। सीताराम के बारे में बालक के हजारों प्रश्नों का जवाब वह प्रसन्नता पूर्वक देता था।
3: अच्छा राम जी को राक्षसों से डर नहीं लगता था?
8: नहीं बेटा, वे तो बहुत वीर और साहसी थे। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में उत्पात मचाने वाले सारे राक्षसों को राम जी ने मार भगाया था, और उस समय वे तुमसे थोड़े ही बड़े रहे होंगे।
3: अच्छा, अगर मैं धनुष विद्या सीख लूं तो क्या मैं भी राक्षसों को मार सकूंगा?
8: हाँ हाँ मेरा राजा बेटा, बड़ा होकर न जाने कितने राक्षसों से लड़ेगा, उन्हें मार भगाएगा।
3: पर राम जी जंगल में क्यों चले गए? मना क्यों नहीं किया? उन्हें डर नहीं लगा क्या?
8: बेटा राम जी माता कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, और पिता दशरथ को तो वे देवता समान पूजते थे। इन दोनों का कहा भला वे कैसे न मानते? माता पिता की भक्ति करना तो कोई राम जी से सीखे।
3: अच्छा जंगल में वो लोग खाते क्या थे? उनके साथ क्या कोई रसोईया भी गया था?
8: नहीं बेटा, वे तो खाली हाथ ही चले गए थे, जंगल में फल फूल खाकर ही गुजारा करते थे।
3: अच्छा, राम जी इतना अच्छा धनुष चलाते थे तो वे सोने के हिरण को पकड़ क्यों नहीं पाए?
8: बेटा, अब वो कोई असली हिरण थोड़ा ही था, वह तो माया थी माया। और राम जी को रावण का वध करना होगा, लोगों को उसके अत्याचार से बचाना होगा, यह सब तो पहले से ही तय था। तभी तो यह माया हिरण का दिखना, सीता हरण और राम रावण का युद्ध हुआ।
3: अगर राम जी सीता को साथ ना ले जाते तब तो यह सब झंझट ही नहीं होता।
0: कोचवान किसी कारणवश शादी विवाह के खिलाफ था, उसने नरेन को समझाया।
8: अब क्या बताएं बेटवा, ये औरतें ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। न जाती सीता मैया तो राम जी को इतना परेशान न होना पड़ता।
1: कोचवान ने विवाहित जीवन की अशांति का ऐसा जीता जागता वर्णन किया कि बालक नरेंद्रनाथ के सुकुमार चित्त पर उसकी छाप गंभीर रूप से अंकित हो गई। उसके मन में अनेक चिंताएं उठने लगी और बेचैन होकर आंखों में आंसू भरे वे माँ के पास आए। आंसू देखकर माँ ने पूछा,
9: क्या हुआ बिले, किसी ने कुछ कहा क्या?
3: माँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा।
9: क्यों, अचानक ऐसी बातें क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे मालूम है शादी होने के बाद आदमी को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
0: नरेन ने माँ को कोचवान से सुनी हुई सारी बातें कह दी।
9: ठीक है बाबा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अभी कौन तेरी शादी करवा रहा है, जब बड़ा होगा तो देखी जाएगी। जा, अब जाकर खेल, ये कोचवान भी।
3: मेरी शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो दूसरी बात से परेशान हूँ।
9: अब कौन सी बात लेकर परेशान है?
3: मैं राम सीता की पूजा कैसे करूँ, सीता तो राम की पत्नी थी ना।
9: अरे बिले, तू तो मुझे पागल ही कर देगा, तू और तेरे सवालों का जवाब देते देते तो मैं इधर आना मेरे पास, आजा आंसू पोंछ ले, आ ला मैं पोंछ देती हूँ, ले बेटा आजा आजा मेरा बच्चा। राम सीता की पूजा न भी करो तो क्या है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा।
0: नरेन कमरे से निकल आया, उसका मन अब तक शांत नहीं हुआ था। वो छत के कमरे से अपनी प्रिय राम सीता की मूर्ति को हाथों में उठा लाया और छत पर आकर खड़ा हो गया। संध्या हो चली थी, नरेन हाथों में मूर्ति लिए कुछ सोच रहा था। अंततः वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा,
3: माफ करना राम जी, माफ करना सीता मैया, मैं आप दोनों का भक्त हूँ, श्रद्धा भी रखता हूँ, पर विवाहित जीवन वो मेरा आदर्श नहीं है, मैं आप दोनों की पूजा नहीं कर सकता।
0: कहते कहते वो व्याकुल हो उठा और मूर्ति को माथे से लगाकर नीचे फेंक दी।
1: दत्त भवन में अरसे से माने जाने वाले देशाचार और लोकाचार के छोटे छोटे नियमों को नरेन बचपन से ही नहीं मानता था। माँ के डांटने पर वो तुरंत उन नियमों का कारण पूछ बैठता।
9: ए, ए बिले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है, भात खाते खाते बदन पर हाथ लगा रहा था।
3: क्यों क्यों नहीं लगा सकता, इस थाली में क्या बुराई है?
9: अरे वो भात की थाली है, झूठा है ना।
3: झूठा, भात थाली में डालने से थाली झूठी हो जाती है?
9: हाँ।
3: तो भात पेट में जाकर शरीर को भी झूठा कर देता है, फिर तुम मेरे झूठे शरीर को गोद में लेकर प्यार कैसे करते हो?
9: बिले बकवास मत कर, जो कहती हूँ सुना कर।
3: अच्छा माँ, तुम भी तो भात खाती हो, फिर उस झूठे शरीर से शिवजी की पूजा कैसे करती हो?
9: सुन लो इसकी बातें, चल खा लिया ना, चल चल उठ उठ, चल पानी पी ले। अरे अरे अरे अरे अरे अरे, बाएं से नहीं, दाहिने हाथ से गिलास पकड़।
3: क्यों, अब बाएं हाथ में क्या हुआ? खाना तो दाहिने हाथ से खाया ना, और फिर बाएं दाएं में क्या फर्क है?
9: बहुत फर्क है, कोई भी अच्छा काम बाएं से नहीं किया जाता, समझे? हमेशा दाहिने हाथ से ही पानी पिया जाता है।
3: नहीं, मैं तो बाएं से ही पीऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। क्या तुम्हारे शिव जी नाराज हो जाएंगे?
9: ओह, अब तेरे साथ कौन मुंह लड़ाए, चल उठ जा, उठकर दोनों हाथों को अच्छी तरह धो ले। चल चल चल चल चल, आ जा।
0: बालक नरेंद्र का मन एक ही तरह के खेल कूद में नहीं लगता था, वो हमेशा वैचित्र में नए नए खेलों की इजाद करते रहते थे। उनके साथी भी प्रबल उत्साह के साथ अपने नेता के साथ नए खेलों में जुट जाते। एक बार नरेंद्र का मन पुराने खेल से ऊब गया। उन्होंने झिल्ली कागज का एक रंगीन लालटेन बनाया और उसके अंदर मोमबत्ती जलाकर दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर दोस्तों का मनोरंजन करने लगे। शाम को जब घरों में लालटेन जलाया जाता तो वे भाई बहनों को दीवार पर हाथों की परछाई से कई तरह के जानवरों और चिड़ियों की आकृतियां बनाकर दिखाते थे।
1: इसी समय उनके मन में पाक विद्या सीखने का विचार आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जिससे जितना बन सके रसोई का सामान इकट्ठा कर लाए। सभी एक दो आलू बैंगन आदि घर से ले आए। ज्यादातर सामान चूल्हा कड़ाही बर्तन और तेल मसाला नरेंद्र अपनी रसोई से मांग लाए। दोस्तों ने मिलकर बड़े उत्साह से खाना पकाया और उस अधपके भोजन को बड़े चाव से खाया। कहना ना होगा कि नरेंद्र ही प्रधान रसोईया बने और दूसरे बच्चों ने उनकी सहायता की।
0: यद्यपि बालक नरेंद्र नाथ शरारत करने में सबसे आगे थे, पर उनमें अशुभ या अन्याय की कोई मनसा नहीं होती थी। उनका सहज सरल स्वभाव सांसारिक कुटिलताओं से दूर रहता था। सत्यवादिता उनके जीवन का सार था। भले ही वे दिन भर विभिन्न खेलों और हास्य विनोद में मग्न रहते, पर रात को उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन प्राप्त होते, जिक्र उन्होंने बड़े होने पर किया था। जैसे जैसे नरेंद्र की उम्र बढ़ी, उनकी मानसिकता में एक सुस्पष्ट परिवर्तन देखा गया। वे अब बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया, नियमित रूप से अखबार पढ़ने लगे और किसी के साथ भी सार्वजनिक भाषण सुनने जाते, और जो कुछ सुनाते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने दोस्तों को सुनाते। वे लोग कुछ समझते कुछ नहीं समझते, पर नरेंद्र की बातें वे चमत्कृत होकर सुनते। इस तरह उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था।
1: बचपन में एक बार नरेंद्र के साथ उनके एक सहपाठी की मारपीट हो गई थी। नरेंद्र टिफिन में मिठाई लाए थे। उनके सहपाठी ने, जो उनसे उम्र और ताकत में बड़ा था, नरेंद्र के हाथ से मिठाई छीन ली। मारा मारी शुरू हो गई। नरेंद्र मिठाई वापस नहीं ले पाए और भयंकर नाराज हो गए। मास्टर साहब को शिकायत करने पर उन्होंने समझाया।
5: छी छी छी छी छी छी नरेंद्र, तुम इतने बड़े घर के बेटे हो, तुम्हें एक मिठाई के लिए मारामारी करना शोभा नहीं देता। फिर वह लड़का किस घर का है, उसकी छीनी हुई मिठाई क्या तुम दोबारा खा सकते थे?
3: क्यों क्यों नहीं खा सकते थे? वह मुझसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं जीत नहीं पाया। नहीं तो क्या मैं उसे वह मिठाई खाने देता?
5: नरेंद्र, कहा ना, उसका छुआ तुम नहीं खा सकते।
3: क्यों, क्या है, क्या है उसके हाथों में? उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकता?
0: नरेंद्रनाथ ने अपने संपूर्ण जीवन में ये सब आचार व्यवहार छुआछूत कभी नहीं माना। बड़े होने पर एक बार इस दाएं बाएं झूठा और छुआछूत के प्रसंग में भयंकर नाराज होकर कहा था,
10: आप लोगों का पूरा ध्यान इन्हीं तुच्छ विषयों में ही लगा है कि हम पानी किस हाथ से पिए, किस किस को हम छू सकते हैं और इन नियमों के भंग होने पर कौन कौन से प्रायश्चित होने चाहिए। पहले तो हम भगवान का निवास ऊपर स्वर्ग में या नीचे मानव हृदय में समझते थे, पर अब जान पड़ता है कि वे रसोई घर व रसोई के बर्तनों में निवास करने लगे हैं। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है उदार बनना और कूप मंडूकता को त्याग कर बाहर आना, आत्मसात करना और खुद को सार्वभौमिक बना देना। पर हम तो अपने को नित्य लघुतर बनाते जा रहे हैं और शास्त्रों के आदेश के विपरीत अपने को सबसे अलग करते जा रहे हैं। हम अपने देशवासियों से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में बंटकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मुक्ति? मुक्ति अलगाव में नहीं जुड़ाव में है। अपनी मुक्ति चाहते हो तो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, देश की समाज की मुक्ति होगी, देश की समाज की मुक्ति होगी।